0: रेडियो समृद्ध नेपाल 92 मेगाहर्ट्ज।
1: रेडियो समृद्ध नेपाल स्टुडियो टाइम चेक अहिले दिउँसोको ठीक 1 बजेको साथ।

0: 말고 가리 형이
1: 어떠니?
0: 아주 누가 사랑하는 거지?
2: डाँगा
0: गरे कार्य सोल्टी होइन भर्खर लाल आउँदै के हो घरमा कार्यक्रम छ राख्ने
2: होला के हुन्छ सबैजना